ए कुमार जी हजुर का मुखार बिन्दुबाट धेरै कुरा सुन्ने अवसर पाए प्रभु तेज पछि का कुरा के भए संहार करता श्री महादेव को हालत कस्तो भयो सती देवीले कसका गर्भमा बास लिए श्री महादेव र पार्वती को विवाह कसरी भयो आदि कुरा जान्न निकै उत्सुक छु प्रभु आज्ञा हुन्छ।

0: TBS होइन सम्बन्ध हो।
1: रंग बहार रंग बहार
2: वर्ज संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
1: वर्ज पेंसे घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ।
1: वर्ज पेंसे
3: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

गजुरी में आवाज CDS को अपग्रेड करने लाये भाग्य ने अपग्रेड होने अच्छा माइको डील गजुरी आदर्श चौक में आए रहो तो पहले जुन्सुके ब्रांड को पुराना साधन एक्सचेंज करेगा ब्रांड न्यू TVS छोटा पाउंड होने से 10 लाख समय को कैश डिस्काउंट TVS को सिम को चाबी अथवा 100% समय कैश बैक ये तो मात्र होई ना हरेक दिन लकी ड्रॉ बाटर दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5% समय फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भर में पुरानो साधन में कतई नपाइने खतरा इवैल्युएशन एउटा फ्री हेलमेट र TVS लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ असोज 8 गते देखि 16 गते सम्म गजुरी 1 आदर्श चौक प्रभु बैंक सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कशप 9848 56 20 88 9823 18 917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्

0: जनता केवल पांच दशक देखी
1: गजुरी में अब टीडीएस को अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड हुने अच्छा माइको डील गजुरी आदर्श चौक में आए रहता पहले जुनसुके ब्रांड को पुराना साधन एक्सचेंज करेगा ब्रांड न्यू टीडीएस चौड़ा पाउन हुने था 10 लाख सम्म को कैश डिस्काउंट टीडीएस को स्पिन को चाबी अथवा 100% सम्म कैश बैक यति मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्र बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनान्स को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भरमा पुरानो साधन मा कतै नपाइने खत्रै भ्यालुएसन एउटा फ्री हेलमेट र टीडीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनुहुनेछ असोज 8 गते देखि 16 गते सम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कशप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्

0: TBS ファイナ三万だほ。
1: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धारिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

गजुरी गाँव में टीवीएस को अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड होने अचम्म को डील गजुरी आदर्श चोक में आए तपाईले जुनसुक ब्रांड को पुरानो साधन एक्सचेंज करे ब्रांड न्यू टीवीएस चढ़ा पाने 10 लाख सम्म को कैश डिस्काउंट टीवीएस को सुन को चाबी अथवा 100% सम्म कैश बैक ये मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्र बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भर में पुरानो साधन में कतई नपाइने खतरे वैल्यू एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफ टाइम वारेन्टी पनि पाउनुहुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नुहोला शर्तहरू लागू हुनेछन्

0: जनता केवल पांच दशक देखी
1: गजुरी में आवर टीवीएस को अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड होने अच्छा माइको डील गजुरी आदर्श चौक में आए रहते पहले जुनसुके ब्रांड को पुराना साधन एक्सचेंज करेगा ब्रांड न्यू टीवीएस चौड़ा पाउन होने से 10 लाख सम्म को कैश डिस्काउंट टीवीएस को स्पिन को चाबी अथवा 100% सम्म कैश बैक यदि मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्रॉ बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भर में पुरानो साधन में कतई नपाइने खतरै वैल्यू एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ असोज 8 गते देखि 16 गते सम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु बैंक सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कशप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लू बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्

गजुरी में आवाज टीवीएस को अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड होने अच्छा माइको डील गजुरी आदर्श चौक में आए रहता पहले जुनसुके ब्रांड को पुराना साधन एक्सचेंज करेगा ब्रांड न्यू टीवीएस चौड़ा पाउंड होने था 10 लाख सम्मो को कैश डिस्काउंट टीवीएस को चुन को चाबी अथवा 100% सम्मो कैश बैक ये मात्र होइना हरेक दिन लकी ड्रॉ बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्मो फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भर में पुरानो साधन में कतई नपाइने खतरा इवैल्युएशन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ असोज 8 गतेदेखि 16 गते सम्म गजुरी 1 आदर्श चौक प्रभु ब्याङ्क सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कसप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्

गजुरी नामक टीवीएस को अपग्रेड हाने लाई भाग्य ने अपग्रेड हुने अच्छा माइको डील गजुरी आदर्श चौक में आए र तो पहले जुनसुके ब्रांड को पुरानो साधन एक्सचेंज करेगा ब्रांड न्यू टीवीएस चौड़ा पाउन हुने था 10 लाख सम्म को कैश डिस्काउंट टीवीएस को स्पिन को चाबी अथवा 100% सम्म कैश बैक यति मात्र होइन हरेक दिन लकी ड्र बाट दुई भाग्यशाली कस्टमर लाई 5 वर्ष सम्म फ्री सर्विस फटाफट फाइनेंस को सुविधा नागरिकता र लाइसेंस के भर में पुरानो साधन में कतई नपाइने खतरा इवैल्युएशन एउटा फ्री हेलमेट र टीवीएस लाइफटाइम वारेन्टी पनि पाउनु हुनेछ असोज 8 गते देखि 16 गते सम्म गजुरी 1 आदर्श चोक प्रभु बैंक सँगै सम्पर्कका लागि विश्वराल मोटरसाइकल वर्कशप 9848562088 9023188917 एक्सचेन्ज गर्न आउँदा पुरानो साधनको ब्लु बुक साथै ल्याउन नभुल्नु होला शर्तहरू लागू हुनेछन्